से भक्त से भक्त भले जननाथ जी जो पावे मेरे हाथ भगवंता कुमार पुरुष अपरम पुर करता जी सुख जीवन अवर न

निर्विकार निर्विकार हरिगंध आज पंडी अनाथ प्रसंग काता मूल क्या प्रतिष्ठा

वर्ण तो कहन कहन सोची तुम्हरा लता न जाए तुम्हारा केवल सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप रूपा हर अंत भयो का अंध जगेर जैसे।

0: जाके लोग तो खुलाओ
1: इन्हीं भाग्य पे जा लालो गले गिरी पालू
0: भाग जाके धोखा तो खुलाओ

0: हरके जगतला कर्म से चले जाके हरके जगतला मारो तीर चास दे जाबर जुनवी चानू चानू मारो तीर चास दे जाबर जुनवी चानू कर्म दे चंदे जाके हर एक जगह चलाओ कर्म दे चंदे जाके हर एक जगह चलाओ
1: रस्ते पागे।

ताके गुरुजी चलते आजा ताके गुरुजी चलते चूड़ी काले वाले कर ली तैयारी।

0: अगर एक भी व्यक्ति इस एल्बम में सुन के उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरु अपनी रचना तो जप लवे तो असं समझांगे कि साडा ये एल्बम बनाने का मकसद पूरा होया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा।

पर सब अपराध करते है देखते बच्चा गलतियां बड़िया करता भुला बड़िया करता मां कहती है मेरे मथे ना लगी लगी मैं तेरा मुंह नहीं देखने लग जाऊं जिन्हिया मर्जी करे गलतियां से एक बारी मां के गल नू आ चिंबड़े से एक बारी कह देना मां बस मां सुनिया नहीं ते मां सारे उंगल भुल जाएगी जेड़ी कहती सी मेरे मथे ना लगी बच्चा एक बारी आ जा ते मां बख्श देंगी अपराध करत है जैसे जनगी गीत ना राख बचे राम मैया हो बारक तेरा ऐ सच्चे बादशाह मैं भी ते तेरा बारक है काहे ना ठंडस अवगुण मेरा जिन्हें मां भुल जाती है तुम क्यों नहीं भुलोगे करो कृपा

अपराध करत है जिससे जननी शीत न राक्ष तेते राम मैया हों बारक तेरा काहे न खंडित अवगुण मेरा असी खिन खिन भुलन हार मना विच जे झाती मार के वेखीए ना प्यारे हो असी ते गुरु ग्रंथ साहिब मार चरणा दे विच बैठण दे लायक भी नहीं है सो सतनाम इन्ने कौगण कीते ध्यान दिओ इन्नियां क गलतियां कीतियां ने इन्नियां क भुलां कीतियां ने असी ते महाराज दे चरणा च बैठण दे लायक भी नहीं पर सतगुरु फिर भी कृपा कर रहे हैं सच्चे पातशाह फिर भी साडे ते बख्शिश कर रहे हैं महाराज ने साडे अवगुणा नूं नाच तारदिआं होइआं अपने चरणा च भाजिआ महापुरख कहिंदे हुंदे सी कहिंदे प्यारे ओ राणा साहिब वाले महापुरख बचन करदे कहिंदे भाई किसी दे चंगा कहण ते अपने आप नूं चंगा ना समझो क्योंकि लोग ते बड़ी पसंद करदे ने लोग ते कहिंदे ही आ जे कोई तुहानूं बहुता चंगा कहिंदा बहुता वधिया वधिया कहिंदा ते चौड़ा ना हो जी भी मैं ते सचमुच ही बड़ा वधिया मेरी लोग बड़ी जय जयकार करदे कहिंदे अपने आप नूं बहुता वड्डा ना समझ ली जे लोग वड्डा वड्डा कही जाणगे ते जे लोग बहुती निंदिया करी जाण ते अपना मनोबल डिगण नहीं देना लोग ते मेरी निंदिया करते फलाना इंज बोलता दूजा इंज बोलता तीजा इंज बोलता महापुरुष कहिंदे हुंदे जी प्यारे हो किसे दी बहुती निंदिया करन ते भी अपने आप दा मनोबल ना डिगण दिओ कोई बहुता सोभा करी जाए ते अपने आप नूं वड्डा ना समझ लैणा अपने अंतिश करन विच मार के

की कीर्ति महाराज लेहर करो तो अपराध करत है नीचे जननी कीत न राक्ष तेते राम अय्या हो बारक तेरा काहे ना खंडत सावन मेरा। भाई अजी विधि चंद कहना महाराज पापा च और बीतगी करो कृपा मेहर करो भैन की लोड़ आ साडे भैन की देरी है गुरु के बख्शन की कोई देरी साडे आने की देरी है साडे एक बार आके बेनती करन भी देरी है मां ने बख्शन लगिया देर नहीं पर कोई मनो आके गुरु के चरणा देंगे फिर बख्शे से पात्र बन सकने। ते भाई विधि चंद किने मार तू बख्शाया उन्हें ते किदा उन्हें सेवा की ते किदा उन्हें गुरु घर की पंथ की सेवा की ते आपां आने वाले दवाना विचार करन। तो अज समा बहुत लेट हो गया कल का जिहड़ा दवान है रात का वह 7 तो लैके 9 बजे तक होएगा जरा ध्यान दो 7 तो 9 तक रात का दवान होएगा। अज सफर ज्यादा होने कारण समा लेट हो गया काफी पर हम 2 दिन इतने ही अकाल कल से परसों कल का भी 7 तो 9 दवान लगना परसों का भी 7 तो 9 जो 15-20 मिनट अद्धा घंटा उपर भी लग जाएगा 9:30 ही बज जाए तो ही कोई नहीं। तो अज पहला दिन सी इस करके लेट आने की मैं माफी भी मंगी संगत तो पहला भी समा लेट हो गया सफर में रात उ जिते पिछे दवान चलते थी समैल विखे उत्थे रात अमृत संचार भी होया 2 दिन का समागम होया ते कल तीजा सी तीजे दवान च कल अमृत संचार होया ते सतगुरां दी मेहर नाल 100 दे लगभग प्राणी अमृत छक के गुरु के जहाजे चले सतगुरां ने कृपा की। मैनू इदा लगता भी इतों इंग्लैंड का 100 ते इंडिया के 2000 वर्गा है इंडिया 2000 ने छक लिया ते 100 ने छक लिया बराबर है क्योंकि इतने सिखा की गिनती घट फिर इतने कलयुग का पहरा भी है ते साथ समय भी बैठे इस गल होर कहते आपकी कलयुग बहुत है कलयुग बहुत है जिन्हें कलयुग में बज जाना खचत होना उन्हें इंडिया जाए के भी हो जाना तो जिन्हें बजना है उन्होंने इतने भी बज जाना बड़े गुरमुख ने बच्चे बड़े कमाइने वाले भी बड़े थम भी ने बड़े बड़े अंगे हुए भी है जिन्होंने बजना उन्होंने कलयुग तो इतने भी बज जाना जिन्होंने नहीं बजना उन्हें इंडिया जाने भी नहीं बजना पर मार की कृपा ही है बस सतगुरां ने बचा के रखना सच्चे पातशाह यही अरदास करो।

मध पूरन अंत पूर्ण परमेश्वर है, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनाशन जगदीश्वर है। देखन सुनन सनामनो मन मह दृढ़ी है साच, पूर रहे हो सर्वतर में, नानक हर रंग राच पौड़ी, हर एक निरंजन गाई है।

अपदा तिस बिन नहीं कोई, खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रविया सब लोई, जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई, सलोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन, सास सास सिमरंत नानक महा अगन ना बनासन, मुख तले पैरे उपरे बसंतो को हतड़ै थाए, नानक सो तनी क्यों वसारे हो उदर है जिस दै नाए, पौड़ी रक्त बिंद कर निम्या अगन उदर मझार, उर्द मुख कुचील बिकल नरक घोर गुबार, हर सिमरत तू ना जल है मन तन उरतार, बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार, प्रभ बिसरत सुख कदे नाही जास है जन्म हार, सलोक मन इच्छा दान करन सर्वत्र आसा पूर्ण है, खंडन कल कलिश है प्रभ सिमर नानक नह दूर नह, हब रंग मान है जिस संग तैस्यों लाई है नेहो, सो सहो बिंद ना विसरो नानक जिन सुंदर।

आस दिए राज भले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरत तन मन हरिया लह जाहि वियोग साध संग हर गुण रमोह बिनते सब रोग सलोक कुटंब जतन करन माया अनेक उदम है हर भगत भाव हीन नानक प्रभ विसरत ते प्रेम।

पौड़ी जिस बिसरत तन पसम हुए कहते सब परेत खिन ग्रह में बसन ना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्भ संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर्म एहो खेत अकिरत घणा हर विस्तरिया जोनी परमेत सलोक कोट दान इस नानंग अनक सोधन पवित्र तह उचरंत नानक हर हर रसना सर्ब पाप बिमुचते ईंदन कीतो मूकणा भोरी दितिम पाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हब्बे दुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नास होहे सिमरत हर नाउ मन किंदे फल पाई है हर के गुण गाओ जन्म मरण भय कटी है निश्चल सच थाओ पूर्व होवै लिखिया हर चरण समाओ कर कृपा प्रभ राख लेहो नानक बल जाओ सलोक ग्रह रचना अपारं मन बलास स्वादंग रसै कदाच नह सिमरंत नानक ते जंत बिस्ता किरम है मुच अडंबर हब के हो मांज महब्बत ने सो साई जै विसरै।

सह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन ताई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरू उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साथ ना सिन्ना राजा सगली सिष्ट का हर नाम मन भिन्ना तिसकी धूड़ मन उदरै प्रभ होए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया।

माया त्रोह पौड़ी सुपने से ती चेता मूर्ख लाया विसरे राज रस भोग जागत पखलाया हार जा गई विहाई धंदै ताया पूर्ण भये न काम मोहया माया क्या विचारा जंत जा आप भुलाया सलोक बसंत स्वर्ग लोक है जितते पृथ्वी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबरे उजड़ सोई थाओ पौड़ी महापयान उद्यान नगर कर मानिया झूठ समगरी पेख सच कर जानिया।

रूप कपटंग धन कपटंग कुल गर्भ तह संचंत बिखिया छलंग छिदनंग नानक बिन हर संग ना चालती ते खंदड़ो की भुल तुम्मा दिसम सोहना अड ना लहंदड़ो मुल नानक साथ ना जुली माया पौड़ी चलदिया नाल ना चले सो क्यों संजी है तिसका कहो क्या जतन जिस ते वंजी है हर बिसरे है क्यों त्रिपतावे ना मन रंजी है प्रभु छोड़ अन लागे नरक समंजी है हो कृपाल दयाल नानक पौ भंजी है सलोक नाच राज सुख मिस्तंग नाच भोग रस मिस्तंग नाच मिस्तंग सुख माया मिस्तंग साध संग हर नानक दास मिस्तंग प्रभ दर्शन लगड़ा सो नेहो मन मजाहू रत्या विदड़ो सच थोक नानक मिठड़ा सो धनी पौड़ी हर बिन कछु ना लागई भगतन को मीठा खान स्वाद सब फीकिया कर निर्णों दीठा अज्ञान भरम दुख कटिया गुर

प्रभु बिनसे सब झूठा सलोक त्यकत जलं नह जीव मीनं नह त्याग चातरक मेघ मंडल है बाण बेधंच क्रंक नादं अल बंदन कुसुम बासन है चरण कमलर चंत संत है नानक आन नारुचते मुख दिखाऊं पलक छड आन ना देऊ चेत जीवन संगम तिस धणी हर नानक संता मित पौड़ी ज्यों मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावै बूंद विहूणा चात्र को क्यों कर कृपतावै नाद कुरंक है बेदिया सनमुख उठ तावै पवर लोभी कुसुम बास का मिले आप बंधावै क्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं सास सास आराधन है।

नह विसरंत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। सीतड़ा मन मजाही पलक ना थीवै बाहरा नानक आसड़ी निवाही सदा ते खंडो सच धनी पौड़ी आसावंती आस गसाई पूरी है। मिल गोपाल गोबिंद ना कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाहो नह जाहे वसूरी है। होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है। सलोक रसना उचरंत नाम सर्वनंग सुनंत शब्द अमृत है। नानक तिन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्राह्मण है।

तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवाव है प्रभ मत्था हर जस लिख है बेअंत सोह है से हथा चरण पनीत पवित्र चाल है प्रभ पथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक पावी अधोत करन हर रमन संजोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त।

कहो कौन है जित प्रभ को पाई, सो मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई, वड्डे भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई, सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है, सरल सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे। छड़े ओ हबे आप लगड़ो चरना पास, नठड़ो दुख ताप नानक प्रभ पेख।

राम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपौ भय मन टूट न आवे मूल संचिया नाम धन संत जना स्यों संग पाइए वड्डे पुन आठ पहर हर त्याई हर जस नित सुन सलोक दया करन दुख हरन उचरन नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत ना माया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जां प्रभ भये दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गए नास हर एक त्याया निर्मल भये शरीर जन धूरी नाया मन तन भये संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटंब संग लोग कुल सुबाया सलोक गुरु गोविंद गोपाल गुर गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुरु नानक पतत उदाहरण है भौजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लगिया पौड़ी धन धन गुरदेव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब भये ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अपदसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नरहर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह एक सेवी एक समला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचिया।

आवन जाना हुक्म सब निश्चल तुध थेओ नानक मंगै दान कर कृपा नाम देओ। जय श्री बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नाथ कछु ना जानो मन माया कै हाथ बिकानो रहाओ। तुम कहियत हो जगत गुर स्वामी हम कहियत कल युग के कामी। इन पंचन मेरो मन जो बिगारियो पल पल हर जीते अंतर पारियो। जत देखो तत दुख की राती अजो ना पते आए निगम भये साखी। गौतम नार उमापत स्वामी शीस धरन सहस्त भग गामी। इन दूतन खल बद कर मारियो बड़ो निलाज अजहू नहीं।

तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो तिन प्रभ आप पलायो रहाओ हर कथा हर जस साध संगत सियो एक मोहत ना एहो मन लायो बिगसियो पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खेयो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वशल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लादे अपनायो टोडी महला पंजवा मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज सिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन शर्म कीनो इकत्तर करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया कर आभरण सवारी तेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

आया। भयो अनग्रहो जाको प्रभ को तिस हृदय नाम वसाया। साध संगत कै पाछे परयो जन नानक हर रस पाया। टोडी महला पंजवा कृपा निद बसो हृदय हर लीत तैसी बुद्ध करहो पर।

महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गाव, आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो, जो तू देहे तही एहो तृप्त है, आन न कतहु तावो, सद ही निकट जानो प्रभ स्वामी, सगल नेन होए रही है, साधु संगत होए प्रापत, ता प्रभ अपना लही है, सदा सदा हम शोहरे तुमरे, तू

नाम सखाई सदा मेरे संग, हर नाम मोको निस्तारे, विखे बलास कहियत बहुतेरे, चलत ना कछु संग।

मनह चरावो भोग छोड़ आपत बाद अहंकारा मान सोई जो होग संत टहल सोई है लागा जिस मस्तक लिख

ता थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन पीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देखै लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ढाकन को एक हरे रहाओ अनक सिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे।

प्रभ राखु शरण परी टोडी महला पंजवा हर की चरण कमल मन त्याऊ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को नाऊ रहा।

नानक सरन परे दुख पंजन जां का बड परताप तुडी महला पंजवां स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारी रहाऊ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंध हारी चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवां करती जा चौपदी।

देखन को तारी माने आस रहाउ सिमरौ नाम निरंजन करती मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा पेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेओ कोट सूर नानक परगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन बिस्मन बिस्म पये बिस्म।

कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ। कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख। देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख। चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख। नानक तरन गही सुख सागर जन्म मरन फिर गर्भ ना दुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाउ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर कीरत तत बिचारी गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी। नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी। टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदमहाई। उर्जियो कनक कामनी के रस नह कीरत प्रभ गाई रहाउ। जग झूठे को साच जान कै ता स्यों रुच उपजाई। दीन बंद सिमरियो नहीं कबहू होत जो संग सहाई। मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई। कह नानक अब नाहे अंत गत बिन हर की सरनाई। टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर। जल की माछली चरे खजूर काए रे बक बाद लायो जिन हर पायो तिनह छुपायो रहाउ। पंडित होए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जाने। कौन को कलंक रहयो राम नाम लेत ही पतत पवित भये राम कहत ही रहाउ। राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई। भणत नाम देव सो कृत समत भये गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए। तीन संदे खेल आशय रहाऊ।

जाति का विशेष सम्मान तो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान तो संसार नू जानू करवाना कर्म कांड तो बचन लई प्रेरणा देना जिस तरह फुरमान है कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै केवल अकाल पुरख दी सिफत सलाह न जुड़ना इस अकाल पुरख ते विश्वास प्रीत प्रतीत सबना जिया का एक दाता दा स्नेहा घर घर पहुंचान वास्ते सब गुरु प्रचार संस्था टी सीरीज दे सहयोग नाल आप संस्था वास्ते आडियो वीडियो कैसटा राही निरोल गुरबाणी दा कीर्तन अते स्नेहा पहुंचा रही है कि हर सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नू अर्थां सहित पढ़े घटो घट 400 साल प्रकाश दिहाड़े नू मनाउन तक एक सहज पाठ जरूर करे और अपने जीवन नू सफला करे कीर्तन दी लड़ी दे विच भाई साहिब भाई हरजिंदर सिंह जी श्री नगर वाले शब्द सरवण करवा रहे हैं बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे आओ अरदास रूप हो करके इस शब्द का गायन करिए ता जो अभी सारे ही शब्द गुरु दे लड़ लग जाइए आओ आप सरवण करिए।

पंथ दे महान कीर्तनीय सुरीली और बुलंद आवाज दे मालक भाई साहब भाई मुख्तार सिंह जी आप जी नू साहबां दी पवित्र बाणी नाल जोड़ रहे हैं। आओ उन्हां पासों साहबां दी पवित्र बाणी दा कीर्तन सरवण करिए जी।

गुर सिख मन्ना नानक पवे ना सिख वैसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दुर्गा मान पंचे सोहे हैं दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कहे करे विचार उ करते करण नाही।

शांतमलिमलप्रसारी असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच गाय विचार वारा न जावा एक।

करना नहीं चाहे, नमाज पढ़ना पूछे, नमाज पढ़ना झूठे, नमाज तंग नर कर्मे, नमाज तंग नर कर्मे, नमाज तंग नर देशे, नमाज तंग नर पैसे, नमाज तंग नर नामे, नमाज तंग नर कामे, नमाज तंग नर काते, नमाज तंग नर दास काते, नमाज तंग नर दूते, नमाज तंग

सदा सचदानंद सरबंग प्रणासी अनोखे रूपे समाज कल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा दृद करता अद उर दर्दंग अगंग हरता पारंग परम परमेश्वरंग ब्रोष बालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदीय बेदीय नामंग कामंग समाज को ब्राजी समाज का सुदामंग तेरा जहूर जाच भी संग जले हैं थले हैं पीता पे हैं प्रभु आजुआ देसा पे सहे ही पजांग प्रयाग शाम्भ

नमो गीत गीते नम प्रीत प्रीते नम रूप रोके नमो शोक शोके नमो सर्व रोके नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व जीतंग नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणाशी अनुपे रूपे समाकल निवासी

सर्वत्र माने हैं, के सर्वत्र दाने हैं, के सर्वत्र गौण है, के सर्वत्र पावन है, के सर्वत्र देशा है, के सर्वत्र पेशा है, के सर्वत्र काल है, के सर्वत्र पाल है, के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र काज है, के सर्वत्र राज है, के सर्वत्र सुख है, के सर्वत्र दुख है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र प्राण है, के सर्वत्र देश है, के सर्वत्र पेश है, के सर्वत्र माने हैं, सदैव उन प्रधाने हैं, के सर्वत्र जाते हैं, के सर्वत्र थापे हैं, के सर्वत्र पान है, के सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वम कलीम है, के परम भीम है, के आकलो अलाम है, के सर्व कलाम है, के उष्णो वजू है, तमाम रजू है, मेसो सलाम है, सलीख समाम है, गरीबल सदस्य है, गरीबल बरसता है, बलिंदर मकान है, जमीन और जमान है, कहीं गल तमाम है, रुजू और रुझान है।

जलधर मांडो देश पांडो जलधर महांतो देश बेअंत वन पवन आश्रितरास आजान बाह कर्दाह ओंकार आदि कथनी अनाद।

कर हैं, सर्व पास हैं, सर्वनाश हैं, करुणा कर हैं, विश्वम्बर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगदेश्वर हैं, ब्रह्मांड से हैं, कलखंड से हैं, परदे पर हैं, करुणा कर हैं, जप जप थप थप हैं, अकृता कृता अमृत अमृत हैं, अमृत अमृत हैं।

अहंकार भांगे न मोहासास न भांग भांगे अभांगे अपंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी कामे कचरी छंद अजय अलय पह पूज विनाश कर।

जानत महामूर्खेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चिंतन देव आपा पुण्य बुद्ध है जेती वर्णत पहन पहन तो है जेती तुमरा लखा न जाय पसार।

कहे नानक लेवा बाजों क्या करे बेचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुरु की कृपा करे प्यारिया कर कृपा कलवे कटे ज्ञान जन सारिया अंदर जिनका मोह दुटा जिनका सब सच्चा सुभा।

साथ रहे सबको सचमावेरे विक्रिया प्रसूर राम राम देवल नलिए प्रचाय नानक मतम कृपाए जिसमें जोर चली संग्राम कान कृष्ण जातु पया कार जात को पीले आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में वेद असर बन हुआ न खुदाई अलोपया नील वस्त्र कपड़े पहरे।

नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमरो सिमर समर सुख पावो, कल क्लेश तन मोहि मिटावो। सिमरो जासब संभरे, कै नाम देवता गन काने कै। वेद पुराण सिमर सुध अखर, कीने राम नाम की आखर।

सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जन का मन विश्राम रहाओ। प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ का सिमरन दुख जम नसै। प्रभ का सिमरन काल पर हरै, प्रभ का सिमरन दुश्मन तरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ का सिमरन अन दिन जागै। प्रभ का सिमरन भाव न व्यापै, प्रभ का सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सब निधान नानक हर रंग। प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, प्रभ का सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ का सिमरन जपता पूजा, प्रभ का सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ का सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ का सिमरन दरगह मानी। प्रभ का सिमरन होए सो भला, प्रभ का सिमरन सफल फला।

जब प्रभु का सिमरन सबसे सुध जाए, प्रभु का सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु का सिमरन पूर्ण आशा, प्रभु का सिमरन मन की मर जाए, अमृत नामृत माही समाये, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभु को सिमरन से तनवंते, प्रभु को सिमरन से पतिवंते, प्रभु को सिमरन से जन प्रवान, प्रभु को सिमरन से पुरुष प्रधान, प्रभु को सिमरन से वे मोहताजे, प्रभु को सिमरन से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरन से सुखवासी, प्रभु को

कै मालक जीना हर तन जन को आवरव दीना हर हर जन कै ओत सुकानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग किसे तरे पार जाते हो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्द सब नसै संत का संग बड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम से आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु

सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मतमल हेया सगल उद्दम में उद्दम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल वाणी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओह उत्तम थान नानक जिहे घट वस।

अष्टपदी मैया के गुण केत पुरानी कवन मूल से कवन दृष्टानी जिंतु साज सवासि गारिया गर्भ अगन महल न उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोगन पूजन सुख सूद वृद्ध भया ऊपर साक सैन मुख्य पियाओ बैठ कौ दैन केहो निर्गुण गुण कछु नाम बूझै बख्श लेहु तौ नानक सीजै जे प्रसाद का रूप सुख बसै सुत प्रात मीत बनिता संग हसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पौन पाव के अमला जे प्रसाद भोग्या सब रसा सगल समग्री संग सस बसा जिन्ह हस पाव कर नेत्र रसना तिसै त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मुड़ अंधबे आपे नानक काढ़ निहो प्रवे आपे आद

ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगल सामग्री तुमरे सूत्र धारी, तुमसे हुए सो आज्ञाकारी, तुमरी गतमिर तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक दीन हार प्रभ छोड़ कर लग है अन सो आए, नानक कहूँ न सी जई, बिन्ना में पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाचे।

सदनम सुकारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्व सुख नानक तिन पाया। अगनत शाहो अपनी दे रास, सात पीत बरत अनंत उलास। अपनिया मान कछ बहुर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खूवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी बस्त से आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मानै मातै। उससे चौगुण करे न हाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक पात माया।

मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन धन को टंब सवाया मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राज जोगन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अश्व बस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर दर्प को हृदय।

मिथ्या तन्नहि परि उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देह नानक हर हर नाम लय। मिथ्या साकत की आज्ञा साज बिना कह होवत सूचा बिरसा नाम बिना तन अंध मुख आवत पा कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन बिरसा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोबिंद भजन बिन बिरसे सब काम ज्यो किरपन के निरा रस धाम। तन तन से जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कच अवर कमावत मन ही तीर्थ मुखों गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू भीन। अवर उपदेश है आप न करै आवत जावत जन्म मरै जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सिख तरै संसार। जो तुम भाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया आप है माने। आप है आप आप कट नबीरा किसै दूर ज नावत किसै बुझावत नीरा। उपाव स्यान सगल ते रहत सब कुछ जाने आत्म की रहत जिस पावै तिस लय लड़ लाए शांत नंतर है समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरि।

देव अष्टबली ये प्रसाद शक्ति अमृत साहे तो ठाकुर को रख मन माहे ये प्रसाद सुगंधता लावे तस्को सिमृत परमगत पावे ये प्रसाद बस सुख मंद सत्याय सदा मन अंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय ध्यावन योग जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिस त्याग सत अवर लोभावे जिह प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय जिह प्रसाद तुझ सब को मान मुक्ता को जस संबखान जिह प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगह मान पावे नानक पत्ते ती कर।

जिहे प्रसाद तेरे सगल चित्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके जिहे प्रसाद को ना पहुचे मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जिहे प्रसाद पाए दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करिहि जिहे प्रसाद आपूखन पहरी जाय मन चित सिमरत क्यों आलस की जाय जिहे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ को गभू न बिसारी जिहे प्रसाद बाग मिलक धना राख तोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सर तिसै त्याई तिसै त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जिहे प्रसाद कहे पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जिहे प्रसाद तू आचार व्योहारी जिस प्रभ को साल

नानक जाप जपै जप सोए, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ, सब कृपा ते होए प्रगास, सबु दया ते कमल विगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए, सब निधान प्रभ तेरी मया, आपो किसना किन्हू लया, जित जित लाभ चित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछुना हाथ, लोक अगमागार पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सुमुगता होए, सुन मीता नानक बिनवंता, सार्जना की अचरज कथा अष्टपदी, सारग संगमुख उजल होत, साल संगम सगली खोत, सारग संग मिटै अभिमान, सारक संग प्रगटै सो ज्ञान, सारक संग बुझै प्रभु नीरा, साध संग सब होत नबीरा, सारक संग पाए नाम रतन, सारक संग एकु प्रजतन, सादकी महिमा बनै कौन प्राणी, नानक सादकी सोभा प्रभु माहि समानी, सारक संग गोचर मिलै, सारक संग सदा प्रफुल्लै, सारक संग आवह बस पंचा, साध संग मुतरस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, सारक संग मनोहर बैन, सारक संग न कतम उतावै, साध संग स्थित मन पावै, सारक संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापुनीत, साध संग किस्यों नहीं बैर, सारक संग ना बीगा पैर, सारक संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, सारक संग नाही हो ताप, सारक संग तजै सर्व्याप, आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बन आई, सारक संग ना कबहू तावै, सारक संग सदा सुख पावै, साध संग बस्तर गोचर लहै, साधु कै संग अजस है, सारक संग बसै थान ऊचै, साधु कै संग महल पहुचै, सारक संग दृढ़ सब धर्म, सारक संग केवल पार ब्रह्म, सारक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान, सारक संग सब कुल उधारै, साधु संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो तन पावै, जिस धन च सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सो बसो देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, सारक संग सर्वथान गम, नानक सारक संग सफल जनम, सारक संग नाही कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल, सारक संग कलुखत हरै, सारक संग नरक पर हरै, सारक संग इहा उहा सोहेला, साध संग बिशरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, सारक संग ना बिस्ता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, सारक संग सुनो हर नाव, साध संग हर के गुण गाओ, सारक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, सारक संग लगै प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कट डीठा, साध संग पय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी, सारक संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संयोग, सारकी महिमा वेद न जानै, जेता सुनह तेता बख्यान है, सारकी उपमा ते गुण।

ज्ञानी की नाम। ब्रह्म ज्ञानी के सब उपरमया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा साउंड रसी, ब्रह्म ज्ञानी की रिष्ट अमृत बसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मोटा, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी क्या गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही संधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी का होए सो फला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक है रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्य न जाए अध्यक्ष, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त ज्योत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब प्रहास। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। उर्धार है जो अंतर नाम, सर्व में देखे भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना पस, मन में प्रीतन रंजन दस। पात्र रूप न पेख्या नित, साध के टैल संत संग हित। करन न सुने काहू की निंदा, सबसे जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिकिया पर हरै, मन की वासना मन ते टरै। इंद्री जित पंच दोख ते रैत, नानक कोट मजे को ऐसा अप्रस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया से हुए भिन्न। कर्म करत हुए ने कर्म जिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचा, केवल भगत की तन संग्राच। मंथन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवर नाम जो पावे, नानक ओह वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मंत्र बिंत सगला परम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम हुए। भगवंत की टैल करे नित नीत, मंथन अर्पय विष्णु प्रीत। हरके चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। हो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में शोध। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नयावे। वेद पुराण समृत बूझे मूल, सूखम मैं जाने असूल। कहो वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, कहो वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिसकी गत होए, साध संग पावे जन कोए। कर कृपा अंतर उधार, पस प्रेत मुग्ध पासर कौतार। सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जोत के देना पाई है धर्म, नानक तस मिले जिस लिखिया तुर कर्म। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत राम दास। आत्म राम तुख नजरी आया, दास संतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर्घ है प्रवान। अपने दास को आप कृपा करे, तुस दास को सब सो जी परे। सगल संग आत्म ओ दास, ऐसे जुगत नानक राम दास। रब की आज्ञा आत्म हित आवै, जीवन मुक्त सो कहावै।
तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जुगत ताए साई जुगत नानक, हो पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रखै तैसा तिन नाओ। आपे कन्न करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसर्यो आप होय अनंत तरंग, लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करह अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमय उदासी। कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धार हैं, कई कोट कब का विचार हैं। कई कोट नव तन नाम त्याव, नानक करते का अंत न पाव है। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट के पन कठोर, कई कोट अभिग आत्म ने कोर। कई कोट पर दर्भ को हिरा, कई कोट पर दुख न करें। कई कोट माया श्रम माए, कई कोट पर देश प्रमाए। जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जान करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश को मंडल। कई कोट सस्य सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र। सगल समग्री अपने सूत धार, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्शास्त्र। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण सीवे। कई कोट जख्य किन्नर पे साच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सबसे नेरा सब होते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्म है जीव है मरे, कई कोट भोजोनी फिर है। कई कोट बैठते ही साहे, कई कोट काल है सक पाहे। कई कोट किए धनवंत, कई कोट माया मह चिंत। जह जह पाना तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे। कई कोट भये बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगे सतसंग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट होए अवतार, कई जगत की नोक विस्तार। कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एकंकार। कई कोट की ने बहु भांत, सबते होए प्रभ महे समात। ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास, किन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बेते, सदा निहार है एको नेत्रे। कई कोट नाम रस पीव है, अमर भय सद सद ही जीव है। कई कोट नाम गुण गाव है, आत्म

जब लग जाना मुझसे कष्ट हुई, तब इसको सुख नाही कोई। जब ही जाना मैं किस करता, सब लग गर्भ जोन में फिरता। जब तारे को बैरी मीत, सब लग नेचर नाही चीत। जब लग मोह मगन संगमाए, तब लग धर्म राय दे सजाए। सब कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हों छूटै। सहस कटेलह को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाचै पावे। अनक भोग बिछिया की करै, न तृप्तावे खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजै, सपन मनोरथ बिरसे सब काजै। नाम रंग सर्व सुख हुए, बड़ भागी किसे प्राप्त हुए। कर्ण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। कर्ण करावन करने हार, जिसके हाथ कहाँ विचार। जैसी दृष्टि करी।

आए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब कुछ चलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच ने चाए संत दुखी का थाव को नाही नानक संत भावे तो ए पी गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक कंठ गन्ना पाई।

दिन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बेजोग। संत की निंदा दोख मैं दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसै का नहीं मित। संत का दुखी कौ डाण लागे, संत के दुखी कौ

संत के दुखी को उद्यान प्रवाईऐ, संत का दुखी उजड़ पाईऐ, संत का दुखी अंतर ते सोसा, जो सास बिना मृत की लोसा। संत के दुखी की जड़ किस नाहे, आपन बीज आपे ही काहे। संत के दुखी को अवर न रखना हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दुखी इउं बिरलाए, जो जल भी हुन मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पाप का ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटे अकेला, जो बुआड़ तिलके तुमा हिंदू हेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। चित निंदक का तुरही पया, नानक ज्योतिष पावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दुर्गा मिले सजाए। संत का दुखी सदा सह खाई है, संत का दुखी नाम रहना जीवाई है। संत के दुखी की पूजा न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा। संत का दुख न तृष्ठा कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए। पया कितना मिठा कोई, नानक जाने सच्चा सोए। सब कर तिसके ओ कर नैहार, सदा सदा तिसको नमस्कार। सबकी उस करो दिन रात, तसा ते आवो सास विरास। सब कुछ वर्त्या तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करना हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनों कृपा करे तिस आपन।

पछानै, हित उठ की ओह सो जी जानै। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तन्हें निरंजन जानिया। गुर प्रसाद

एक ऊपर जिस जन की आशा, जिसकी कटिए जम की फाशा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तसहन लागह दूख, जिसको हर पव मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै, जिस प्रभु अपना कृपा करै, तो सेवक को किसते डरै, जैसा साथ ऐसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत सब बूजया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न किस जन्म है न किस मरै, आपन

अनक ज्योत रच साप ओ साप अबनासी नाही किस खंड तारण तार रहे ब्रह्मांड अलख अभेव पुर

पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तसै चितार, जो कज करे सोई सुख मान, फूला काहे फ्रै अजान, कौन बस आई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हृदय माहे, नानक पत से ती

लाल के प्रसंत संग चाल, खबर त्याग बिठिया जंजाल। तन तन कह सब कोई, मुग उजल हर दर कह सोए। एहो व्यापार विरला व्यापार है, नानक।

ऊज नित्य के स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जानु। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेद करें एक रंग।

नाम के तारे प्रिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सोजन गत पाए। रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत तेजन जाकर रह प्रवेश, सत नित बूझे जे कोई, नाम जपता की

चरण सत सत प्रसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखण हार, नाम सत सत ध्यान हार, आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता, सुरत सत सत जस सुनता, बुझन हार को सत सब होए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जन मान्या, कर्ण करावंत न मूल पछान्या, जा कर हृदय विश्वास सब आया, सत ज्ञान तिस मंत्र टाया, ऐसे निरपो हुए बसाना, जिससे उपजत समाहे समाना।

सेवा करत हुए ने कामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, जिस विश्वे गुर का मन मान, सो सेवक परमेश्वर की गत जान, सो सतगुर जिस हर नाऊ, अनक बार गुर कौ बल।

की कीमत किन्हें न पाई, अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमर है, सदबले हारी सदगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने।

आधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनको पावना चूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंचत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे थना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना, सुत मीर को टंब अर बनिता, हिंते कहो तुम कमन सनाता, राज रंग माया विस्तार, हिंते कहो कमन छुटकार, अस हसी रथ असवारी, झूठा डंप झूठ पासारी, जिन दिए तित बुझे नाम बेगाना, नाम विसार नानक पहचाना, गुर की मद तूले ए आने, भगत बिना बहु डूबे स्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम अहरो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार भूत सत हर को नाओ, चाय सुभाए नानक गुन गाओ तेरी उतरस मैल, बिन सजाए हों मैं बिस फैल, ओहे अचिंत बसै सुख नाल, सासग राज हर नाम संभाल, छाड सयानप सगली मना, साध संग पावै सत तना, हर पूंजी संत करो व्यवहार, इहां सुख दर गह जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जा कै मस्तक लेख, एको जप एको सा लाहे, एक सिमर एको मन आहे।

सबकी दृष्ट महासुख होए, हरस पावे बिरला कोय, किन चाक्षा से जन त्रिवताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुभर भरे प्रेम रस रंग, उपजय चाओ साधक संग, परे सरन आंसव त्याग, अंतर प्रगास आनंदिन लेव लाग, बड़ पागी जपया प्रभ कोय, नानक नावरते सुख होय, शिव की मनता पूरी पई, सरगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दोष भ्रम गया, इस पुण्य श्रद्धा सा पूरी, सब रहया सर संग हयूरी, जिसका साथ लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम

सर्व समाये प्रभु भक्त छंद दीन दयाल भगत वशव सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कथा कर्त प्रतपाल आदि पुरुष कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सोहे पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीत अजान नानक कमल सन पुरुष भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोह पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग वडिआई हर के नाम की कथा मन पाई मोह भोजन काप संगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो कानी शोभा हृदय बस पूरन गुरमंत।

जब आकार एक असना दृष्टिता पाप पुण तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाध तब बैर विरोध के संग कमात जब इसका वरण कह नांगापत तब हरक सोग को कसै व्यापत जब आपन आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत भरम आपन केल आप वतीजा नानक करना हा ना दूजा जब होवत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुहाए तब शिव सगत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कौन निडर कौन खत डरै आपन चलित आप कर नैहार नानक ठाकुर अगम अपार अब नाश सुख अपने आसन चाहे जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन का तब रव सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत ओ चिर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ नरिंदना गोचर आगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही है चर्जा नानक आपन रूप आप ही हो करजा यह निर्मल पुरुष पुरुष पत होता चाहे बिन मैल कहो क्या तोता यह निरंजन निरंकार निर्वाण चाहे कौन को मान कौन अभिमान यह स्वरूप केवल जगदीश चाहे शल शिद लगत कहो कीस यह ज्योत स्वरूपी।

पाप जह अचल अकेदा तुहे समाया ऊहा के सहबे आप समाया आपस को आप है आदेश जो गुण का ना ही प्रवेश यह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लाग चिंता यह अपने

सहते हाथ, जिस भावे तिस लय मिलाए, भगत करें हर के गुण गाए, मन अंतर विश्वास कर मानिया, तरन हर नानक इक जानिया, जन लागा हर एक नाए, जिसकी आस न मिटती जाए, सेवक को सेवा बने आए, हुक्म बूझ परम पद पाई, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसया निरंकार, बंधन तोर भय निर्वैर, अनदन पूजें गुर के पैर, यही लोग सुखी है पर लोक सुहेले, नानक हर पवे आप है मेले, साध संग मिल करो।

माए, जैसे हुए सो नाही बुरा, औरा कहो कि न कछ करा। आप भला करतु ते अपनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साय सारी सब साच, ओत पोत अपन संग राच, ताकि गतमत कहीं न जाए, दूसर होए तो सोची पाए। जिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक इहो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप में लाए लय प्रभु सोए। ओह धनवंत कुलवंत पतिवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया।

अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेश सास सासम रोग बिंद मन अंतर की उतरे पिंद आस अनिप त्याग सुरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर धन के पर लेहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग पर परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित बहु नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल सुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत होत उधार आवत रैलो कह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग चाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन अनद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माते नानक उदरे दिन कै साते सन जोग सुन सर नहीं आए कर कृपा प्रव्या मिलाए मिट गए बैर भये सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो

पंचवी बचन की तेरी कहंदे ने के मनुख दा बचपन एक ऐसा है जे मेरा मालक मेर करे ओदा बचपन सबर जाए ते शायद कहंदे सारी जिंदगी ओदी सुख दे नाल बतीत हो सकदी। सतगुरु ने एक प्रमाण भी दिता है कहंदे ने जदो रुख किते हनेरी नाल टुटदे ने जां पत्ते जांदे ने ते मन विच आउंदा है ए वड्डे होए तां आकड़ आई उच्चे होए तां पत्ते गए हनेरी तां उदों भी आउंदी सी जदों ए रुख अजे कुछ मकीनिया दा सी पर इन्ना कु लचकीला पण सी उदों झुकण दी दात दी जितना मर्जी झखड़ आए इनू कोई ना तोड़ सकदा सी ना पट सकदा सी। साहब कहिंदे ने मेरे मालका भावें ए परमार्थ वल्ले है जदों आपां तुरने साहब कहिंदे जिओ जी भावना पहला पहला शरदा पैदा हुंदी है सतगुरु दे नेड़े झुकना बाणी पढ़नी जे किते मेरे मालका ए शरदा अंतले समय तक निभ जाए ते मनुख दे जीवन दी कोई कीमत पा ही नहीं सकदा। जिवें आपां पढ़ने कबीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निभ और हीरा किसका बापड़ा पुजे ना रतन करोड़ जितनी देर तक गुरमुखी लिपि नहीं ओनी देर तक गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़ के ओ आनंद नहीं जो सतगुरु जी दे पवित्र चरण कमलां विच बैठ के आपा गुरमुखी पढ़ के जे दूसरी भाषा विच एदा तर्जमा भी करांगे गुरमुखो जिस तरीके हजूर ने बाणी अंकित कीती है ओदे लई सतगुरु जी दी इस पावन पवित्र बोली गुरमुखी भाषा दा ज्ञान होना अत लाजमी। खैर सतगुरु मेर करे ए उपराला सिरे चढ़दा रहे। साध संगत धन गुरु अमरदास महाराज जी दी अंतली वसीयत जो ओ केवल अपने परिवार नू नहीं समुचे सिख जगत नू कह के गए ते धन गुरु अमरदास जी दे परपोते बाबा सुंदर जी ने छे पौड़ियां दे विच इस शब्द नू उचारण कीता ते धन गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित कर दिता। चार पौड़ियां आपां वाच चुके हां पिछली पौड़ी विच वाचिया सी हजूर ने कहा कि मेरे सिखो मेरे पुत्रो मेरे भरावो मेनू परमेश्वर दा सदा आया ते मेनू रब दा भाणा चंगा लगा ते जिन्नू भाणा साईं दा चंगा लग जाए ओदे उत्ते मेरे मालक दी मेरे रब ओनू शाबाश कहिंदा है। जदो इन्ने शब्द कह ते भावना वालियां दियां अखां भर आईयां साहिब कह लगे कि गल होर चेते रखियो भावें तुसी सेवा कीती सिमरन कीता दिन रात मेरे कोल रहे हो पर मेरे जान तो बाद जे कोई ताहा मारेगा कोई स्यापा करेगा कोई वैन पाएगा ओ मेनू बिलकुल चंगा नहीं लगना ते महाराज क्यों कह लगे रोई दा ओनू वे जेड़ा जिंदगी विच असफल होके गया होवे ते जेड़ा जिंदगी विच अपनी मंजिल अपने मुकाम ते ते साईं दे महल विच पहुंच जाए सजनो ओदे जान ते रोना नहीं ओदे जान ते ता प्रसन्न होना चाहिए। सतगुरु ने कियो जा सिद्धांत दिता जदो आपां पढ़ने हां रोई दा उन्नू में जिदे बारे साहिब कहिंदे ने अंधले क्या पाया जगाए राम हृदय नी गुर की सेवा चाले मूल गवाए ते प्रसन्न किदे ते जिनू साहिब कहिंदे गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया जेड़ा साईं दी दरगाह विच जाके मेरे मालक दी हजूरी विच परवान हो जांदा है। ए आपां वाकिया सी अज मेरे गुरु देव ने बख्शिश कीती है ते थोड़ी जी एकाग्रता नाल अर्थ आपां विचारने नी। साहिब नू पुछिया फिर महाराज जे रोना नहीं तां की करिए ते सतगुरु ने फिर पहला बचन क्या कहन लगे अंते सतगुर बोलिया अंते दर्शे जड़े अंतले शब्द अंतले बचन गुरु अमरदास ने कह अंते सतगुर बोलिया की बोलिया तन गुरु अमरदास कहने मैं पिछा है मेरे जान तो बाद कीर्तन करो निर्वाण जियो निर्वाण दा अखरी अर्थ हुंदा वासना तो रहत मेरे जान तो बाद जदों शरीर विचों ओ

खड़े ना होयो आपो अपनी जगह ते बैठे रहो प्यारे। आप ही रास्ता छोड़ो।

बेनती है जेड़े अमर छक के आ रहे ने कुछ भाई आ इत्थे बह सकते ने बाकी फिर रस्ते च बह जाणगे मत्था टेक के। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वचन है जदों महाराज सचखंड लगे जान ध्यान दियो सिंघा ने बेनती की कहिंदे सच्चे पातशाह असी हुण दर्शन किहदे करांगे। महाराज कहिंदे पंज प्यारे त्यार वर त्यार होण जदों बाणा पा लिया करनगे शस्त्रधारी होणगे उन्हां दे दर्शन करियो तुहानूं उन्हां विच्चों मेरे दर्शन होया करनगे।

सही कवि चलायो हम सिखन को गुरु मान लो पिछे बाबा घट खड़िया हो रही प्यारे हो।

बेनतियां करो संग रूप महाराज सत्य पाठ आप चढ़ा घंटा काशम काशी अखीर ओदा दाबा भी सी संगत नाल प्यार भी सी जो भी प्यार भरिया नाता भी सी तुसी करो चपई साहब दे पाठ शुरू करो बेनती संग जी शाम दे पांच बज गए चपई साहब दे पाठ हो ही जान विच चल पिया जाप धन श्री गुरु गोबिंद सिंह चपई साहब जी जाप चल पिया वो फिर तुहानू पता उधर जाओ तो फिर बहुत काम तेज हो जाता कलगीधर महाराज जी की याद बड़ी प्यार जी फिर सताउंदी वो रस्ता भी बंद सारे जुड़ गए धन श्री गुरु गोबिंद सिंह तुहानू छे बज गए जी नेरा हो गया अरदास हो बाबा जी रस्ता कहते छे बजे एक नीले बाने विच कोई गुरसिख आंदा ते की कहंदा कि संगत जी सारे आराम कर लो सारे राम कर लो सवेरे पूरा यत्न रस्ता खुल जाएगा नीले बाने ध्यान देना किसी नूं भी प्रेरना इन्हां ने टिकाणा लभ के सारिया ने आराम सवेरे हुण हर इक नूं तरांगे तूं पता करिए पर कहिंदे उठण दी लोड़ नहीं पई चार बजे अपने आप ही एक दूजे नूं कोई उठा रहा दूजा तीजे नूं उठा रहा भी बाहर रस्ता खुल गया है रस्ते खुल गए ने ध्यान देना इन्हां इशनान पाणी कीता पांच साढ़े पांच बजे चाले उत्थों पाए जदों जिस जगह पहाड़ डिगा सी ना जो उत्थों बस टप्पी ना ते जेड़े अधिकारी उत्थों दे रस्ता करा रहे होंगे एक एक दो गुरमुख प्यारे उन्होंने जाके पुछदे है की गल बई ए रस्ता जेड़ा वो बंद हो गया ते हुण सिरे सिरे खुल गया कि उन्होंने दसिया कहिंदे अधिकारी दे मूंह ते बचन सी अधिकारी जेड़ा उत्थों दा काम करवा रहा सी मजदूरां को रहिंदा बाकी भी वो कहिंदा कहिंदा हमारी लेबर रात को कभी काम तो नहीं करती कहिंदे हमारी यहाँ की लेबर रात को कभी काम तो नहीं करती ये पहली बार है कि लेबर ने रात को काम करने को ना नहीं की सारी रात लेबर काम करती रही और सुबह तीन चार बजे रास्ता जेड़ा है वो खुल गया कहिंदे पहली बार लेबर ने राती काम कीता कभी करती नहीं वो संगतां नूं इंज इक प्यार आ गया कि जिहड़ियां तुसीं अरदासां कीतियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज लेबर दे हिरदे च बह गए कि संगतां कालीआं राती ला दिओ देखो संगत दी चीज नूं कलगीधर महाराज गज के आखो सतनाम वाह गुरु प्यारे हो उन्हूं करना पैंदा कि जिन्ने माई भाई बैठे हो ये तीजी जुगती जे नजर लैण दी कि जिहदे संगत दी खुशी ओहदे ते गुरु दी खुशी आखो सतनाम वाह

अंग तोड़ी होगी तू कोठे नहीं आऊंगा। पहले भाई गुरुराज जी ने आख्या है।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु